0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
2: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
3: FM247365
4: Let's celebrate
5: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: at 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Like us on Facebook.com/FM247365

0: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
1: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
2: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: 8:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
0: दिस प्रोग्राम इज

0: एंड बेबक आज ही अपने बैंक से बनवाए।
1: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM 247365

0: एंड बेबक, आज ही अपने बैंक से बनवाएं।
1: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM 247 365

मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। दिस प्रोग्राम इज

0: एंड बेबाक, आज ही अपने बैंक से बनवाए।
1: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा। तो आओ एहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अजमे इस्तेहकाम मुस्तहकम पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
4: FM 247365। किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
5: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
4: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
6: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
5: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या।
4: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
6: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
5: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
6: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
4: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
5: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
4: आइए वेट से आगे का सोचें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: 9:30 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to dil to hai aaram.
2: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
4: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
0: दिस प्रोग्राम इज

0: एंड बेबक, आज ही अपने बैंक से बनवाए।
1: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: एंड पेपॉक, आज ही अपने बैंक से बनवाएं।
1: खवातीनो हजरात, मंशियात वो जहर कातिल है जिसकी संजीदगी का एहसास इंसान को तब होता है जब ये जहर हमारी रगों में साहित कर चुका होता है। वक्ती सुरूर और मजे का लिबादा ओढ़े ये लानत गैर महसूस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल को अपने शिकंजे में ले रही है। मंशियात की लानत में गिरफ्तार होने की एक बड़ी वजह बुरी सोहबत है, जिसको अमूमी तौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि दरअसल इस समल का ताना बाना बुरी सोहबत और मेल जोल से जाके जुड़ता है। घर दिल से लौटना, वालदेन और घर वालों से नजरें चुराना, खानदान और अहबाब की महफिलों से गुरेज करना, गैर मामूली अखराजात में इजाफा, ये सब इसकी बड़ी अलामत है। खुदा रा अपने बच्चों पे नजरें रखे ताकि वो ताहयात आपकी नजरों के सामने रह सके। हमारा आज़्म एक कौम एक मंजिल और मंशियात से पाक पाकिस्तान।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking, aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
3: किसने कहा

0: AM. This time check is brought to you by AGS Tubular Battery Hai To Dil Ko Hai Aara. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
1: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
2: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
3: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: dans la levée.
1: It's 10:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
4: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें. गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें. लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें. मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत.
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
6: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं. ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता. याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है. याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता. अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए. अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं. सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं. ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा. अगर मुकर्रा वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं. शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा. इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राब्ता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे. इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें. अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना CNIC और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं. याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा. लॉग इन होने के बाद बाएं जानिब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें. अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें. इसके बाद शहर, सर्विस, फराहम कुनंदा की किस्म और दीगर मतलूबा मालूमात फराहम करें. अगर आपकी शिकायत किसी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से मुतालिक है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास वो शिकायत नंबर मौजूद हो जो आपको ऑपरेटर के पास शिकायत दर्ज कराते वक्त फराहम किया गया था, क्योंकि पीटीए के पास शिकायत के अंदराज के लिए ये नंबर देना जरूरी होता है. अब कंप्लेंट नंबर दर्ज करें और कंप्लेंट समरी में अपनी शिकायत की तफसील लिखें.
0: ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا، جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
7: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
8: FM 247-365

0: FM 100's time check. It's 11 a.m.
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
2: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
3: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 11:30 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to dil ko hai aaram.
2: Naya Pond's Body Lotion jisme hai 100 tola gold. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
0: FM 24/7/365.

0: FM 100's time check. It's 12 noon.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM 247365.
3: FM 100.
4: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
3: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

0: 6:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
0: This program is brought to you by
2: Step School से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। कॉल नाउ एट 03111178 37।
0: facebook.com/fm247365
3: fm247365

0: This program is brought to you by
1: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
2: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
3: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
4: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
3: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
4: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाइए,
2: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें। वेट से आगे का सोचें।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: बैक टू बैक ओनली म्यूजिक नो आरजे टॉक।
7: ओनली म्यूजिक नो आरजे टॉक।
6: दिस इज FM 100।
8: कम ऑन।

0: FM 100's time check. It's 2 p.m.
1: पेपा कार्ड है?
2: है तो फायदा है,
3: पेपाक है
1: तो ऐड टू कार्ड है,
3: पेपाक है
4: स्टोर ऑनलाइन एन एटीएम हर जगह चले, फायदे पे फायदा दे.
0: This program is brought to you by
5: Step School से Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
6: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
7: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है.
8: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है.
9: घर के अफराद और आमदन में तवाज़ुन
10: हमारी जिम्मेदारी है.
11: खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें.
12: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
13: FM 100
0: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
13: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं फिर से रहमो चाचा अपना डांगा लेकर न आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
3: आम तौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है. आए इसे यकीनी बनाए. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पर कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
4: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.

0: आज ही अपने बैंक से बनवाएं।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
0: पेपक, आज ही अपने बैंक से बनवाएं।
1: एंड
2: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
3: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
4: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
5: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
0: This program is brought to you by
3: Paybuck. Aaj hi apne bank se banwaye.
0: And
4: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
6: FM 247365.

0: It's 5:30 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to dil ko hai aaram.
0: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
3: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशंस ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178 37.

0: नो पानी नो परेशानी।
1: पेपा कार्ड है?
2: है तो फायदा है,
3: पेपाक है
0: तो ऐड टू कार्ड है,
3: पेपाक है
4: स्टोर ऑनलाइन एनएटीएम हर जगह चले, फायदे पे फायदा दे।

0: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
1: हमने अपने आप को से तीन बार मौत देखा।
2: टाइम से मनु ऐसे ही कि मैं हूं कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
3: फिर उन्होंने साडी वीडियो बनाईया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
0: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
4: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
0: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाप के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी। एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्स

0: इसमें अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज्यारत को जाने वाले जायरीन भी कानूनी जरा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैज कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है, और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल मीडिया या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है। ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराह कोनी या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधड़ी और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। अपने ऑनलाइन तहफ्फुज के पेश नजर ये इकदाम जरूर उठाएं। जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट एप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज़ का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बरवक्त और पेशगी इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज़ और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।
3: FM 24/7 365.

0: It's 6:30 PM. This time check is brought to you by AGS Tubular Battery hai to dil ko hai aaram. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
1: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
2: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: बैटरी पर एतबार, नो पानी नो परेशानी।
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए, देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
2: पेपा कार्ड है?
3: है तो फायदा है,
4: पेपाक है
2: तो ऐड टू कार्ड है,
4: पेपाक है
3: इन स्टोर ऑनलाइन एन एटीएम हर जगह चले, फायदे पे फायदा दे।
5: किसने कहा था पैसे बचा।

0: PM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. This program was brought to you by Paybuck. Aaj hi apne bank se banwaye. And Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.

0: पेपा कार्ड है?
1: है तो फायदा है,
2: पेपाक है
0: तो ऐड टू कार्ड है,
2: पेपाक है
3: इन स्टोर ऑनलाइन एन एटीएम हर जगह चले, फायदे पे फायदा दे।
4: पेपाक आज ही अपने बैंक से बनवाए।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL। दिस प्रोग्राम

0: नो पानी नो परेशानी।
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
2: पेपा कार्ड है?
3: है तो फायदा है,
4: पेपाक है
5: तो ऐड टू कार्ड है,
4: पेपाक है
6: इन स्टोर ऑनलाइन एन एटीएम हर जगह चले, फायदे पे फायदा दे।
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: This public service message is brought to you by FM 100. रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
1: facebook.com/fm247
0: मत कीजिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
1: facebook.com/fm247365

0: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
1: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी NGO वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Us on facebook.com/FM247365.

0: FM 100's time check. It's 10 p.m.
1: FM 100. Like us on Facebook.com/FM247365.
2: FM 100.
3: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
2: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

0: बार नो पानी नो परेशानी।
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
2: FM247365

0: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारे गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: facebook.com/fm247365 fm247365

0: नहीं।
1: 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका, नया पॉन्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए, देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
2: FM247365